यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रसभाकै आजुक बैठक छ। रसुवा बाढ़ प्रभावित के उद्धार आ राहत के कार्य के प्राथमिकतामा राख सरकार के ध्यानाकर्षण करबैत विशेष प्रस्ताव पारित कयल अछि। राष्ट्रसभाकै आजुक बैठक में सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल प्रस्तुत कयने रसुवा बाढ़ विशेष प्रस्ताव सभा सर्वसम्मत रूप में पारित कयलक अछि। सभा सँ विशेष प्रस्ताव मार्फत घायल सबके निःशुल्क उपचार कराब, वैज्ञानिक रूप में सब व्यवस्थापन करबाक लेल संगे भौतिक संरचना के पुनर्निर्माण के लेल तहगत सरकार बीच समन्वय करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। अहिना सभा सँ स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा अंतर्राष्ट्रीय के सहयोग के लेल अपील सहित विपद के समय में राष्ट्रीय एकता कायम करबाक लेल आ भविष्य में आबि सकबाक एहन विपद के पूर्व तैयारी के काज आगू बढ़ेबा लेल आग्रह कयलक अछि। अहिना राष्ट्रसभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल गत भादो 10 गते रसुआ के भोटे कोसी नदी में आयल आकस्मिक आ विनाशकारी बाढ़ के कारण भेल अधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति प्रति गहिर दुख व्यक्त करैत विपत्ति के समय में सबके एक पक्ष हेबाक लेल आग्रह कयलनि। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में राष्ट्रीय दलित आयोग के आर्थिक वर्ष 2080-81 के वार्षिक प्रतिवेदन सभा में पेश भेल अछि। एहिसँ पहिने राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में सांसद सब राष्ट्रीय विपद संग लड़ लेल एकताबद्ध प्रयास के आवश्यकता रहल कहैत विनाशकारी भोटे कोसी बाढ़ प्रभावित के खोज, उद्धार, राहत आ पुनर्स्थापना में राज्य के संपूर्ण ताकत लगेबाक चाही पर जोर दिलनि। बैठक के शून्य समय में सदस्य सब पूर्व सूचना प्रणाली के अत्याधुनिक बनाब, पूर्व चेतावनी के कड़ाई के संग कार्यान्वयन आ विपद उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण करबाक लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। अहिना सांसद सब बाढ़, भूस्खलन लगायत विपद के पूर्व चेतावनी के व्यवस्था नहीं का तत्काल कार्य में परिणत करबाक लेल बाढ़ से प्रभावित के तत्काल पारदर्शी आ एक द्वार प्रणाली से राहत उपलब्ध करेबाक लेल ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद सब देश के जोखिमपूर्ण हिमताल के संदर्भ में तत्काल अध्ययन करबाक लेल विपद उत्थानशील पूर्वाधार आ निर्माण के योजना बनाबा सरकार के सुझाव देलनि। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक भादो 23 गते मंगल दिन के 1 बजे बैसत। परराष्ट्र मंत्रालय भोटे कोसी बाढ़ में हरा रहल विदेशी नागरिक के परिवारजन के DNA प्रोफाइल पठेबाक लेल आग्रह कयलक अछि। बाढ़ के संदर्भ में जानकारी देबा लेल मंत्रालय आई के ने नियमित पत्रकार सम्मेलन में बाढ़ में संकलन कयल गेल सब पहचान के लेल हरा रहल विदेशी नागरिक के नजदीक के परिवारजन के DNA प्रोफाइल पठेबा लेल आग्रह कयलक अछि। विदेशी नागरिक के परिवारजन अपने देश में DNA प्रोफाइल तैयार कराकर नेपाल प्रहरी के आधिकारिक ईमेल ठेगाना में पठाब सकबाक परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता सचिव लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री बतौलनि। मंत्रालय DNA प्रोफाइल पठाबक कूटनीतिक माध्यम से संबंधित देश सब में औपचारिक अनुरोध सेहो क चुकल प्रवक्ता पौड़ेल छेत्री बतौलनि। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अखन धरि 1010 सब संकलन कयल गेल अछि, अधिकांश सब के शनाखत हो बने सकल अछि। एहिना बाढ़ के कारण विभिन्न 39 देश के 590 विदेशी नागरिक सहित 4000 से अधिक अखनो हरा रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से संकलन कयल गेल पहचान होब बाकी रहल गेल सब सबके DNA नमूना ल क जमीन के नीचा व्यवस्थापन कयल गेल आ नजदीक के परिवारजन से DNA प्रोफाइल प्राप्त भेलाक बाद पहचान क परिवारजन के सब हस्तांतरण कयल जेबाक परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता सचिव लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री बतौलनि अछि। रसुआ के भोटे कोसी नदी में आल बाढ़ के कारण मृत्यु होबय वाला के संख्या 987 पहुंचल अछि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के हिसाबे आई भिनसर धरि सबसे अधिक चितवन में 321 गोटा के शव भेटल अछि। संगे नवलपरासी पूर्व में 216, नवलपरासी पश्चिम में 170, नुआकोट में 95, गोरखा में 65, धादिंग में 55, तनहू में 38 आ रसुआ में 27 गोटा के शव भेटल अछि। अहिना का 3916 गोटे संपर्क विहीन मध्य नेपाल प्रहरी के 25, नेपाली सेना के 45, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के 13, भंसार कार्यालय के 15, अध्यागमन कार्यालय के 3 गोटे राष्ट्रीय सेवा कर्मचारी रहल अछि। एखन धरि घायल 279 गोटे रहल आ उपचार पश्चात विभिन्न अस्पताल से डिस्चार्ज भेनिहार के संख्या 168 पहुंचल तथा 11814 गोटे के उद्धार भ चुकल प्राधिकरण जनौलक अछि। अहिना का 21011 सुरक्षाकर्मी परिचालन भेल प्राधिकरण जनौलक अछि।
मध्य प्रदेश सरकार भोटे कोशी बाढ़ पीड़ित के दोसर चरण के राहत आई पठेबाक निर्णय कैलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो की अध्यक्षता तथा मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव के प्रमुख आतिथ्य में सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैठक से प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति के बैठक ई निर्णय कैलक अछि। बैठक में भोटे कोशी नदी में आयल विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित नागरिक के लिए मध्य प्रदेश सरकार के करे वाला आवश्यक सहयोग के विषय में विचार विमर्श कायल गेल। गृह संचार तथा कानून मंत्री महतो के जानकारी दिलेन। मंत्री महतो के हिसाबे मध्य प्रदेश सरकार मंगल दिन आई 7,000 कम्बल 700 अस्थायी आवास के लिए टेंट पठेबाक निर्णय कैलक अछि। बैठक में बाढ़ प्रभावित नागरिक के उद्धार राहत सामग्री उपलब्ध करेबाक तथा विपद के कारण विस्थापित परिवार के व्यवस्थापन के लिए प्रदेश सरकार के दिस से आवश्यक सहयोग तथा समन्वय करबाक विषय में विचार विमर्श भेलो बतौलन। बैठक में प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति के पदाधिकारी तथा संबंधित अधिकारी सब की सहभागिता रहल छल। रसुआ के बाढ़ में पड़कर नारायणी नदी दहाक लगल सब भारत के विभिन्न स्थान में भेट लागल अछि। अखन धरि गंडक क्षेत्र होइत भारत पहुँचल 9 सब भारतीय प्रहरी नवल परासी प्रहरी के हस्तांतरण कैलक अछि। रवि दिन 5 सब हस्तांतरण केने भारतीय प्रहरी, आई थप 4 सब हस्तांतरण केने जिला प्रहरी कार्यालय नवल परासी के सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन थापा जानकारी दिलेन। भारत के कुशीनगर जिला स्थित खड्डा गंडक नदी में भेटल शव के सीमावर्ती क्षेत्र महेशपुर नाका में हस्तांतरण कैल गेल अछि। कुशीनगर से आनल गेल ई शव सहायक प्रमुख जिलाधिकारी इलाका प्रहरी कार्यालय के महेशपुर के हस्तांतरण केने कार्यालय के इंचार्ज प्रहरी निरीक्षक शुभराज बम आई के जानकारी दिलेन। भेटल शव के तत्काल पहचान होब नहीं सकल। भारतीय सुरक्षाकर्मी पोस्टमार्टम के क्रम में DNA नमूना सुरक्षित रखने जनौलक अछि। मध्य प्रदेश के जल स्रोत व्यवस्थापन तथा जलवायु उन्मूलन के विषय में प्रदेश नीति तथा योजना आयोग आ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP बीच विचार विमर्श भेल अछि। आई जनकपुर धाम में स्थित प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के उपस्थिति में UNDP के साझेदारी तथा संचार विश्लेषक तामुई फूजी लगायत टोली के सहभागिता में ई विचार विमर्श कैल गेल अछि। विचार विमर्श में मध्य प्रदेश के प्रमुख जल स्रोत तथा क्षेत्र के रणनीति व्यवस्थापन, जल स्रोत के नक्शांकन, सिंचाई तथा पानी के अभाव, रौदी जन्य समस्या, कृषि उत्पादकत्व में पिछला प्रवृत्ति आई क्षेत्र में देखल गेल प्रमुख चुनौती के विषय में विचार विमर्श भेल। आयोग के उपाध्यक्ष सिंह बतौलन ओ मधेश के चुनौती समस्या आवश्यकता लगायत के पहचान का साझेदार संस्था सबके समन्वय में आव वाला कार्यकाल जवाक बतौलन। अहिना का जलवायु अनुकूल प्रविधि के उपयोग तथा संघीय सरकार, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, UNDP लगायत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार सा संचालित आ वित्त पोषित प्रमुख परियोजना के विषय में सेहो विचार विमर्श कैल गेल छल। रसुआ के भोटे कोशी नदी में आयल विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित नागरिक के राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापना के लिए परसा के स्थानीय तह आ निजी क्षेत्र ऐक्यबद्धता जनबैत उल्लेख्य आर्थिक सहयोग की घोषणा कैलक अछि। परसा के 4 स्थानीय तह वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ 1,62,01,101 सहयोग उपलब्ध कराओत। चीन सरकार नेपाल चीन बीच के उत्तरी नाका तातो पानी पार रहल झांगमू पोर्ट अनिश्चित काल के लिए बंद करने जानकारी ईमेल मार्फत दिलक अछि। संभावित विपद के ध्यान दैत चीन सरकार तातो पानी भंसार कार्यालय के भंसार अधिकृत तुल बहादुर पांडे के जानकारी दिलक अछि। रसुआ में आयल बाढ़ जेहने तातो पानी नाका भक बहा वाला भूटे कोशी में सेहो बाढ़ आबि सकबाक अनुमान कऽ चीनिया पक्ष नाका बंद कैने भऽ सकबाक पांडे के कहब छन्। हुनक हिसाबे चीनिया अधिकारी रसुआ बाढ़ आबि सँ पहुँचौने क्षति के मद्देनजर कऽ झांगमू पोर्ट सँ भंसार कार्य बंद करबाक संगे ओतुका कर्मचारी प्रशासन के ऊपर सुसुरक्षित क्षेत्र में लॉज गेल अछि। चीनिया पक्ष सेप्टेम्बर 3 धरि खासा में निर्माण कार्य करबाक भेला सँ किछु दिन पहिनहि सँ कंटेनर पठेबाक रोकक निर्णय कयने छल। चीनिया पक्ष कार्गो आवागमन सेहो अस्थायी रूप में रोकल गेल जानकारी देने अछि। नका कहिया सँ पुनः संचालन होयत एहि संबंध में कोनो जानकारी प्राप्त नहीं अछि। भंसार अधिकृत पांडे चीनिया पक्ष खोल के नया सूचना देश से जानकारी दिलेन। तातो पानी नाका सेहो बंद भेलाक बाद नेपाली चीन व्यापार के विकल्प सेहो
कम भेल अछि। दशैं आ दीपावली नजदीक आयल अवस्था मे ई निर्णय सँ नेपाल के असर पड़त सेतुका व्यवसायी सब के कहब छन्। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन पालस एक वाई एक नामक रॉकेट के पहिल परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक सम्पन्न कयलक अछि। चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहल डोंगफेंग व्यावसायिक अंतरिक्ष नवप्रवर्तन परीक्षण केन्द्र में आई भिनसरे 10 बजे बीजिंग के समय अनुसार रॉकेट प्रक्षेपण कयल गेल छल। प्रक्षेपण पश्चात रॉकेट अपेक्षा हिसाबे काज करैत अपन पेलोड के निर्धारित कक्ष में सफलतापूर्वक पहुँचने छल। परीक्षण के क्रम में निर्धारित सब उद्देश्य पूरा भेल आ संपूर्ण अभियान सफल भेल चीनिया समाचार संस्था सिन्वा जनौलक अछि। ई उड़ान पालस एक रॉकेट के पहिल उड़ान अछि। पालस एक मध्यम आकार के 2 चरण में आधारित तरल ईंधन युक्त रॉकेट अछि। ऐसा चीनिया निजी अंतरिक्ष कंपनी गैलेक्टिक इनर्जी अपन प्रविधि के प्रयोग का विकास कयलक अछि। रॉकेट के लंबाई 52 मीटर आ मुख्य भाग के व्यास 3.35 मीटर रहल अछि। एके प्रक्षेपण समय के कुल तौल करीब 283 टन आ प्रक्षेपण क्षमता लगभग 350 टन बरौबिक रहल कंपनी जनौलक अछि। ऐसा न्यून पृथ्वी कक्ष अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में 5 से लेकर 7 टन धरि के पेलोड पहुँचबाक क्षमता रहल अछि। गैलेक्टिक एनर्जी के एक अधिकारी के हिसाबे पालस एक व्यावसायिक उपग्रह के ग्रह के प्रभावकारी आ तुलनात्मक रूप में कम लागत में अंतरिक्ष में पेलोड पहुँचाबय वाला सेवा उपलब्ध करेबाक उद्देश्य से विकास कयल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटे कोसी बाढ़ प्रभावितों की खोज बसाव और राहत को व्यवस्थित बनाने के लिए बागमती प्रदेश और सभी प्रभावित स्थानीय तहों में सर्वदलीय संयंत्र बनाने पर सहमति। बचाव और राहत कार्य में संघ प्रदेश और स्थानीय तह आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं गृह मंत्री सुदन गुरुंग। भोटे कोसी बाढ़ में अब तक 1066 लोगों की मौत की पुष्टि और रूसी हमले में यूक्रेन में कम से कम 12 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। रसुआ की भोटे कोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1066 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें रसुआ में 43, नुआकोट में 151, धादिंग में 57, चितवन में 321, गोरखा में 66, तनहू में 38, नवलपरासी पूर्व में 216, नवलपरासी पश्चिम में 165 और भारत में 9 शव बरामद किए गए हैं। बरामद शवों में से 1056 शवों की लाश जांच मुचुलका प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 58 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इसी तरह पहचान नहीं हो पाए 913 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, खोज, राहत वितरण और शवों के प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यों के लिए अब तक 7912 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 4530 लोगों को बचाव किया जा चुका है। वहीं अब तक लापता में से 4606 लोगों की तलाश जारी है। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भोटे कोसी बाढ़ प्रभावितों की खोज बचाव और राहत कार्य को व्यवस्थित बनाने के लिए बागमती प्रदेश तथा सभी प्रभावित स्थानीय तहों में सर्वदलीय संयंत्र बनाकर आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। सिंह दरबार में आज हुई प्रमुख राजनीतिक दलों के दूसरे स्तर के नेताओं की बैठक ने सभी दलों को एकजुट होकर आपदा के प्रति कार्य में जुटने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह बैठक में आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भी राजनीतिक संयंत्र बनाकर राष्ट्रीय सहमति के साथ आगे बढ़ने पर सहमति बनी। बैठक के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने यह जानकारी दी। इसी तरह बैठक में आपदा के बाद खोज बचाव और राहत वितरण में सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। इसे और प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता देवराज चालिसे ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के नेता चालिसे ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय संकट के समय नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने का सुझाव दिया गया। नेकपा एमाले के प्रवक्ता प्रदीप ग्यवाली ने कहा कि नेपाल के संविधान ने आपदा प्रबंधन को तीनों तह की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखा है, इसलिए प्रदेश और स्थानीय सरकारों के साथ मजबूत समन्वय आवश्यक है। इसी तरह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता वर्षमान पुन ने कहा कि संघ प्रदेश और स्थानीय तह की सरकारों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण प्रभावित लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। इसी तरह बैठक में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर शाही ने कहा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण नेपाल को अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी है। विदेश मंत्रालय ने भोटे कोसी बाढ़ में लापता विदेशी नागरिकों के परिजनों से डीएनए प्रोफाइल भेजने का आग्रह किया है। बाढ़ के बारे में जानकारी देने के लिए मंत्रालय द्वारा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में बाढ़ में बरामद शवों की पहचान के लिए लापता विदेशी नागरिकों के निकट संबंधियों से डीएनए प्रोफाइल भेजने का आग्रह किया गया। विदेशी नागरिकों के परिजन अपने देश में ही डीएनए प्रोफाइल तैयार करवाकर नेपाल पुलिस के आधिकारिक ईमेल पते पर भेज सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सहसचिव लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और जापान की प्रधानमंत्री शानाए ताई ताकाइची के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। आज दोपहर हुई टेलीफोन वार्ता में जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची ने भोटेकोसी हिमबाड़ से उत्पन्न आपदा के बाद स्थिति में जापान सरकार की ओर से नेपाल के प्रति एकजुटता व्यक्त की। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा की इस घड़ी में जापान सरकार नेपाल के साथ खड़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ताकाइची ने प्रधानमंत्री शाह से बाढ़ के दौरान लापता हुए 5 जापानी नागरिकों की तत्काल खोज और बचाव के लिए आग्रह किया। टेलीफोन वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने बाढ़ से हुई क्षति और आपदा प्रबंधन के लिए नेपाल सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सभा की बैठक में राष्ट्रीय दलित आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। आज की बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने राष्ट्रीय दलित आयोग की आर्थिक वर्ष 2080-81 की वार्षिक रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी भाद्र 23 गते दोपहर 1:15 पर होगी। भोटेकोसी और त्रिशूली नदी का जलस्तर सतर्कता सीमा से नीचे रहने के बावजूद उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। जल विज्ञान तथा जल संसाधन अनुसंधान केंद्र बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ने भोटेकोसी में भाद्र 10 गते आई बाढ़ के बाद दोनों नदियों में पानी का बहाव कम होने के बावजूद सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। रसुआ बाढ़ के बाद लापता जुमला जिले के नागरिक में से अब तक 28 लोग संपर्क में आए हैं। पातारासी गांव पालिका से रोजगार के लिए रसुआ पहुंचे 76 लोगों में से अब तक केवल 23 लोग संपर्क में आए हैं। गांव पालिका अध्यक्ष पूर्ण सिंह बोहरा ने यह जानकारी दी है। प्रमुख जिला अधिकारी तेज प्रकाश प्रसाई के अनुसार स्थानीय तह से प्राप्त विवरण के आधार पर रोजगार के लिए जुमला से रसुआ पहुंचे 99 लोगों के नाम और पते की पुष्टि हुई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के उद्धार और राहत के लिए राज्य का सभी संयंत्र का परिचालन किया गया है। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण में आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में गृह मंत्री गुरुंग ने कहा कि संघ प्रदेश और स्थानीय तहों के आपसी समन्वय में उद्धार और राहत का काम हो रही है। रसुआ की भोटेकोसी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत के लिए कर्नाली प्रदेश सरकार 2 करोड़ रुपए की सहायता देगी। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सुरखेत के वीरेंद्र नगर में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने रसुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव, पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण एवं आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोष में 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्णय लिया है। भोटेकोसी नदी में आई बाढ़ के कारण घायल होकर उद्धार किए गए और महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल लाए गए 27 लोगों का उपचार जारी है। अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर गोपाल शेढ़ाई ने बताया कि अस्पताल में लाए गए कुल 67 मरीजों में से 27 लोगों का उपचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद ने भोटेकोसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को तस्वीर तथा श्रव्य दृश्य सामग्री सोशल मीडिया और संचार माध्यमों पर पोस्ट न करने की सभी संबंधित पक्षों से अपील की है। परिषद के अधिकारी एवं सूचना अधिकारी राम बहादुर चंद ने आज एक सूचना जारी करते हुए बच्चों की निजता बनाए रखना आवश्यक होने के कारण ऐसी सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने का आग्रह किया है। नेपाल टेलीकॉम ने भोटेकोसी बाढ़ से प्रभावित 3 और साइटों को फिर से संचालित करने की जानकारी दी है। आज धादिंग के कल्लेरी तथा नुआकोट के भद्रटार, थप्रेक और कुसन 4 साइटों को पुनः संचालित किया गया है। नेपाल टेलीकॉम के अनुसार इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित उसके कुल 120 साइटों में से 113 साइट अब फिर से संचालन में आ गए हैं। चीन सरकार ने नेपाल चीन सीमा के उत्तरी नाके तातोपानी के पार स्थित झांगू पोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद किए जाने की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी है। संभावित आपदा को ध्यान में रखते हुए चीनी सरकार ने तातोपानी भंसार कार्यालय के भंसार अधिकारी तल बहादुर पांडे को इसकी जानकारी दी है। पांडे के अनुसार रसुआ में आई बाढ़ जैसी बाढ़ तातोपानी नाके से होकर बहने वाली भोटेकोसी नदी में भी जाने की आशंका को देखते हुए चीनी पक्ष ने नाका बंद किया हो सकता है। उनके अनुसार चीनी अधिकारियों ने रसुआ में आई बाढ़ और उससे हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए झांगू पोर्ट से सीमा शुल्क संबंधी कामकाज बंद कर दिया है। साथ ही वहां के कर्मचारियों और प्रशासन को ऊपरी सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत के पिथौरागढ़ में नेपाल भारत सीमा समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा साझा हित के विषयों को आपसी संवाद, समन्वय और स्थापित तंत्र के माध्यम से हल करने पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी बलों ने यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने यह जानकारी दी है। जेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। भारतीय शख्स की मौत की जानकारी ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कभी खत्म न होने वाले युद्धों से निकलने की बात कही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि रूस हमले के बाद हालात से निपटने का काम चल रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि रूस में हमले में बड़ी संख्या में जेट पावर्ड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमले में रिहायशी इमारतों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटेकोसी बाढ़ प्रभावितों की खोज, बसाव और राहत को व्यवस्थित बनाने के लिए बागमती और सभी प्रभावित स्थानीय तहों में सर्वदलीय संयंत्र बनाने पर सहमति। बचाव और राहत कार्य में संघ, प्रदेश और स्थानीय तह आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं गृह मंत्री सुदन गुरुंग। भोटेकोसी बाढ़ में अब तक 1066 लोगों की मौत की हुई पुष्टि और रूसी हमले में यूक्रेन में कम से 12 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: स्टार 14-15 ह्यास डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

बिनु कारण करुणा कर जाकर अस स्वभाव भल भ्राज। हौं कृपालु गुरु चरण शरण गही भयो धन्य जग आज। अर्थात बिना कारण ने जीव उद्धार करने स्वभावले सुशोभित शरणागत रक्षक परम दयामय सद्गुरु भगवान को शरण ग्रहण करेर म आज धन्य भए। प्रात स्मरणीय गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु को चरण कमल में कोटि कोटि वंदन गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश को प्रतीक्षा में रहनुभएका आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। गुरु महिमा को संदर्भ में संत कबीरदास जीले आफ्नो कबीरवाणी में भनेका छन्, सब धरती कागज करू लिखनी सब बनराय, सात समुद्र की मसी करू गुरु गुण लिखी न जाए। यानी कि गुरु महिमा लेख्न म समर्थ छैन है भनी पहिले हात उठाइदिए। आदरणीय श्रोताहरू, संसारको लौकिक विद्या दिने शिक्षकको उपकार त हामी कहिले भुल्न सक्दैनौँ भने जसले हाम्रो आत्मालाई परमात्मासित साक्षात्कार गराइदिन्छन् त्यस्ता समर्थ महात्मा गुरुको गुण कसरी वर्णन गर्न सकिएला, अर्थात् कदापि सकिन्न, किनकि यसमा पनि उनीको कृपा शक्तिको साथ चाहिन्छ। अस्तु आउनुहोस् सत्सङ्ग प्रारम्भ गरौँ गुरु महिमा गानबाट।